अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

साथी रेश धरे यमदूत, राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री राम लला भगवान।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत है श्री मद भगवद गीता का सरल व संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 3 कर्म योग। पिछले अध्याय में श्री भगवान की वाणी से भ्रमित अर्जुन पूछता है कि हे जनार्दन, मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म हेतु प्रेरित करने का क्या अभिप्राय है। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण उसे कर्म योग, ज्ञान योग वे कर्म बंधन के सिद्धांतों को समझाते हैं। वे यज्ञ की महिमा का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन पूछता है,

श्री कृष्ण महापुरुषों द्वारा उत्तम आचरण एवं जनहितकारी कर्मों की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव मात्र को अपने प्राकृतिक गुणों से प्राप्त स्वधर्म का निर्वाह करने को कहते हैं।

अर्जुन के पूछने पर वार्ष्णेय कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम व क्रोध मनुष्य का महान शत्रु तथा पापी होता है। श्री भगवान इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर स्थिर मन व बुद्धि से विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

नदी यानी जीवन धारा, जिसकी गोद में सदियों से पोषित और विकसित होती रही है मानव सभ्यता और संस्कृति, जिसके किनारे साक्षी हैं इतिहास के। स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का जहां होता रहा है जन्म और निर्मित होते रहे हैं हमारे पूजा स्थल, ज्ञान के खुलते रहे हैं चक्षु और पाते रहे हैं लोक से परलोक तक के रहस्यों की दिव्यताएं। नदी न केवल देती है जीवन मनुष्यों को, बल्कि माँ की तरह पालती है जगत के सभी प्राणियों और वनस्पतियों को। नदी का अर्थ मात्र बहता पानी नहीं है, पुरातन से नूतन के विभिन्न जीवन स्वरों की राग मालिका है नदी।

0: सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
1: भारत उपखंड की सात महानदियों में से एक है गोदावरी। पुराण प्रसिद्ध है कि मानव के जीवनहार के लिए इसे पृथ्वी पर लाए महर्षि गौतम। पश्चिम की घाटियों में एक छोटा सा गांव है त्र्यंबकेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भी एक है। महाराष्ट्र में नासिक से 28 किलोमीटर दूर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ वही है ब्रह्मगिरी। गोदावरी का उद्भव यही हुआ।
2: जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्वर्णे मात्रे मन कामुना प्रति जय देव जय दे कर्पूर कर्णं कृणावतारं संसारदारं दिविंग्रहारं सदासंदं नमामि मंदारमाला गुलदारकाय कपालमाला शशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कर्पूर महामंगल निरांजन दीपं दर्शयामि।
1: अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं यहाँ।
3: महर्षि गौतम ने कोसों दूर से आकर ब्रह्मगिरी पर्वत पे कुटिया बनाई और कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। महर्षि ने कहा,
4: हे प्रभु, आपकी जटा से गंगा माई की एक और शाखा प्रवाहमान हो।
5: तब करुणामय शिव जी ने आनंद का तांडव किया और अपने जटाजू ढीले कर एक पतली सी धार छोड़ी। शिव जी का आशीर्वाद है गोदावरी।
3: महर्षि गौतम के बारे में एक और कथा कही जाती है।
5: इस प्रदेश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि गौतम ने अपनी तप शक्ति से खेत जोतकर अनाज पैदा किया और सभी को भोजन कराया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने एक दुबली गाय उनके खेत में चरने के लिए छोड़ दी। महर्षि ने उस पर एक कुश चलाया, गाय मर गई। गो हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने घोर तप किया। उस पाप को धोने के लिए स्वयं गंगा जी को उपस्थित होकर उस स्थान से बहना पड़ा।
1: गौतम महर्षि की ये गंगा ही गोदावरी बनी। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ सात शाखाओं में गोदावरी को आगे लाए। धवलेश्वर के सामने ये नदी दो शाखाओं में बट गई, पूरब में गौतमी, पश्चिम में वशिष्ठा, और वहां से फिर दो शाखाएं होकर पूरब में सागर से संगम।
6: नमस्कार राजेश दीक्षित जी, हम लोग पर्यटक हैं। गोदावरी नदी के जन्मस्थल से लेकर सागर संगम तक की यात्रा हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मगिरी मंदिर आपका आराधना स्थल है, कृपया हमें जानकारी देंगे?
7: महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नाथ संप्रदाय है जो सबसे मान्यता प्राप्त है। हर 12 बरस में इधर एक कुंभ मेला होता है जहां साधु लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव आपस में बयान करते, आपस में चर्चा करते हैं, उसको कुंभ मेला कहते हैं। इधर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसको प्रदक्षिणा लगाते हैं श्रावण महीने में। ये जो त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग है, इसी ज्योतिर्लिंग को राजा ये पदवी है। यहाँ गौतम ऋषि ने जहाँ तपस्या की है वो भी मंदिर है। तो ब्रह्मगिरी जो शिखर है ब्रह्मगिरी पर्वत का, उससे गोदावरी का उगम स्थान है। इधर पेशवे है जो पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवे, उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और तब से वो चालू हो गया था। श्रीमंत माधवराव पेशवे उनके काल में ये पूरा हुआ। ऐसा सभी वारकरी संप्रदाय हो या नाथ संप्रदाय हो या वामाचारी तांत्रिक संप्रदाय हो, सब संप्रदाय इस भूमि से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मदेव की पूजा सिर्फ यही होती है। अपने हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव की पूजा कभी नहीं करते, लेकिन इधर वो इस लिंग में ब्रह्मदेव की पूजा होती है। दूसरी बात ऐसी कि शिवलिंग को हम प्रदक्षिणा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग में तीनों भी देव है, विष्णु और ब्रह्मा, त्रिगुण स्वरूप है ये त्र्यंबकेश्वर, तो इसलिए इसे आद्य ज्योतिर्लिंग, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबक राज कहते हैं।
1: ये है कुशावर्त। गंगा द्वार से निकली गंगा कुशावर्त पहुंचकर ही तो गोदावरी बनी।
6: ये है केदारेश्वर। लगभग 300 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था।

0: शुक्ल यजुर्वेद का पाठ चल रहा है। ये गंगा गोदावरी का मंदिर है। हमने सुना है कि यहाँ माघ शुक्ल दशमी को गोदावरी का जन्मदिन मनाया जाता है। 12 दिनों का उत्सव।
1: अगला उत्सव 11 जनवरी 1991 को होगा। लाखों लोग आते हैं उत्सव देखने। मानव मानव के बीच ऊंच नीच का भेदभाव न हो, यही है नाथ परंपरा का मौलिक उद्देश्य। सुप्रसिद्ध नाथ परंपरा का जन्म त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ था।
0: गोदावरी के पावन जल से पल्लवित और सिंचित है नासिक, युगों से पवित्र। कृतयुग में ये पक्षनगर था, त्रेता में त्रिकंटकम, द्वापर में इसे नवशिखा कहा गया, जो समय के साथ बदलते बदलते नासिक बन गया। गोदावरी का पूर्व तट पंचवटी कहा जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में प्रवेश करते समय मनाया जाता है कुंभ। कहते हैं,
2: एक बार गरुड़ जब अमृत कुंभ को भूमि पर ला रहे थे, तब उसमें से 4 बूंदें भूमि पर गिर पड़ी थी। जहां वे 4 बूंदें पड़ी, उनमें नासिक भी एक है। बाकी 3 हैं हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी, और इन्हीं स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है।
3: रामकथा प्रसिद्ध है पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को यहीं विरूप किया था। यहाँ पांडवों और बुद्ध की गुफाएं भी हैं।
1: नासिक जितना अतीत के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही आधुनिक तीर्थों के लिए भी। तुमने ये जानकारी अपनी डायरी में लिख ली है ना? आओ अब हम लोग करेंसी प्रेस देखने चलेंगे।
0: और हाँ, थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कारखाना अपनी अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। कहते हैं नासिक जिले में 100 से अधिक बड़े उद्योग हैं।
1: गोदावरी नदी पर एशिया का दूसरा बड़ा मिट्टी का बांध सॉइल डैम बनाया गया है, जो 10 किलोमीटर दूरी पर है। इसे ही गंगापुर डैम कहते हैं।
0: अब यहाँ से हमारी यात्रा का अगला पड़ाव होगा पैठण।
1: पैठण में हमें मिलना है आचार्य ब्रह्मानंद देशपांडे जी से। ये इतिहास के विद्वान हैं।

0: गाथा सप्तशती विश्व का पहला संकलित काव्य संग्रह है। अपने राज प्रासाद में बैठकर गोदावरी के तरंगों को निहारता हुआ वह महाराष्ट्रीय प्राकृत में झूम झूम कर गाता था, सच्चम भण गोला वई पूव समुद्रेण सहिया संति सालाहण कुल सद्दसम जईते कूले कूलमत्थी। सच बोलो गोदावरी, तू पूर्व समुद्र तक बहते जाती है, क्या सातवाहन कुल जैसा पराक्रमी और वैभवशाली एक भी राजकुल तेरे तीरों पर बसा हुआ है? यह थी सातवाहनों की विजय गाथा। यह भूमि संतों की है, यह भूमि योद्धाओं की है, भट्टोजी दीक्षित जैसे वैयाकरणों की है जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर टीका लिखी। यह भूमि चित्रकारों की है, लेकिन इन खंडहरों से गुजरते हुए एक भावना मन में जाग उठती है कि एक समय था कि जब पैठन समूचे महाराष्ट्र का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे भारतवर्ष का केंद्र था, एक समय था जब पैठन समूचे यूरोप और आशिया खंड का केंद्र था।
1: पैठन यानी मंदिरों का नगर, सात वाहनों की राजधानी, प्रतिष्ठान नगर, अनेक विभूतियों की जन्मस्थली। सन 1533 में स्वामी एकनाथ का जन्म यहीं हुआ था। कोई 700 वर्ष पहले चक्रधर स्वामी यहां पधारे थे और महानुभाव पंथ की स्थापना की थी।

0: नदी के किनारे पहले बनते थे मंदिर और अब बन रहे हैं बांध और कारखाने, जो समृद्धि और विकास के चरण हैं। पैठण बांध के अलावा मजलगांव और दुधना बांध भी हैं। लगभग 4,60,000 एकड़ में सिंचाई की जाने लगी है। सिंदपण, पूर्ण और दुधना आकर यहीं गोदावरी में मिलती हैं। नांदेड़ होकर गोदावरी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में बहती है और पोलवरम के पास मैदान में प्रवेश करती है। धवलेश्वरम के पास आकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठा।
1: कहते हैं देश में तीन स्थानों पर ही सरस्वती के मंदिर हैं। इनमें से एक मंदिर बासरा आदिलाबाद में है। मूर्ति रेत की बनी है।
0: कालेश्वर महाक्षेत्रम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्षेत्र में गोदावरी उत्तर की ओर से मुड़कर सीधे पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। अर्धचंद्राकार दृश्यावली बड़ी मनभावन लगती है। और द्राक्षारामम का भीमेश्वर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन मंदिरों के साथ कालेश्वर के मंदिर के कारण ही इस प्रदेश को त्रिलिंग देशम भी कहा जाता है।
1: रामावतार के 25 क्षेत्र स्थानों में भद्रगिरी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ श्री आदि शंकराचार्य भी पधारे थे।
0: गोदावरी के किनारे किनारे अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का स्थापत्य हमें अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार कराता है। और जहाँ सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास के विकास की कहानी कहता है, वहीं वर्तमान में भविष्य की जो नींव रखी जा रही है उसका सुख भी देता है।
1: आदिकाल की गाथा आदिवासियों की संस्कृति के बारे में जाने बिना अधूरी है। हैदराबाद स्थित आदिवासी संस्कृति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त निदेशक श्री चंचुराजू से इस बारे में जानकारी मिल सकती है।
2: आदिवासी संस्कृति పరిశోధనా మరియు శిక్షణ సంస్థ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1963లో హైదరాబాద్లో నెలకొల్పన అండి. ముఖ్యమైనటువంటి అతి సున్నితమైనటువంటి విషయాలను గిరిజన సంస్కృతి

0: पहाड़ी होने का प्रमाण पत्र पाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे भी उनके समान लाभ प्राप्त कर सकें। शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष योजना आरंभ की गई है, आश्रम पाठशालाएं खोली गई हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी तरह से तैयार कराया जाता है।
1: आर्थिक योजनाओं की जानकारी लेते हैं श्री विद्यासागर से।
2: आर्थिक अभिवृद्धि पथकाल पद्धति प्रकार जरूरत మొట్టమొదటిది గిరిజన మాగాణ సమారాధనం అనే కార్యక్రమం కిందట ప్రభుత్వ భూమిని దాన్ని చూసి కొల్చి వాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చి ముందు భూమి
3: సర్కార్ నే అనేక ఆర్థిక కార్యక్రమ హాత్మే లియే హై భూమి ఔర్ ఉస్కే పట్టే దేనా భూమి కో ఉపజావు బనానా కువే గహరే కువే తాలాబ్ ఆది సే లిఫ్ట్ సించాయి కీ సువిధా దేనా 3 से 5 वर्ष तक उनकी देखभाल के लिए खर्चा भी सरकार देती है। रेशम उद्योग के लिए बगीचे लगाए जाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ सके और रोजगार के नए अवसर मिल सके, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाते हैं।
4: अपरिचित से परिचित होने का सुख कितना मधुर होता है, ये हम गोदावरी की यात्रा के समय ही जान सके हैं। हमारे साथ संस्मरणों की अनेक डायरियों की पूंजी इकट्ठी हो गई है
1: और आज हम अपने आप को संपन्न समझ रहे हैं, क्योंकि हम जान सके हैं अपना अतीत और वर्तमान। इस महान नदी के तट पर विकसित हो रही सभ्यता को अपनी आंखों देखा और किए हमने हिमालय से समुद्र तक की एकता के दर्शन। जिसे किताबों में पढ़ते रहे उसे सामने देखने का सुख सचमुच वर्णनातीत है।
5: ओम अधात पंचांग रुद्राणाम ओंकार मंत्र संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं तस्मै नकाराय नमो नमः ओम भूर्भुवस्वः ओम नम अम कंखं गंगम।
4: गोदावरी के साथ साथ हम भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने सागर संगम के मनोहारी चित्र तैर रहे हैं।
1: लेकिन हमारी यात्रा का अगला पड़ाव तो है कुवुरु। शैव से वैष्णव की ओर मुड़ेंगे अब हम यहाँ। मेरा मतलब है कि गौड़ीय मठ चलेंगे और वहां हम नादल्ला वेंकटराव जी से मिलेंगे।
4: इस स्थान की विशेषता क्या है?
1: चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे थे और 10 दिन तक रहे थे।
4: अच्छा, तो चलो

0: రాధాకృష్ణుల యొక్క సమ్మిళితావతారమైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు
1: जब श्री चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए यहाँ आए थे, तब श्री रामानंद रायलू जो कि महान भक्त थे उनके साथ उनकी 10 रातों तक चर्चा हुई। विषय था मानव जीवन की सार्थकता क्या है। प्रश्न करते रहे श्री चैतन्य महाप्रभु और उत्तर देते रहे श्री रामानंद। मधुर भक्ति बड़ी महान है। यहाँ गुरु रूप गोस्वामी ने मठ की स्थापना की 1932 में। तब से पौराणिक विषयों पर चर्चा चलती है और पुस्तकों का प्रकाशन होता है।
2: यही पास में स्थित है खाद का कारखाना। यहाँ से कॉस्टिक सोडा का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। पास ही रॉकेट ईंधन उत्पादन करने वाला कारखाना है जिसका विशिष्ट स्थान है।
3: नास्ति ब्रह्मांड नमो देवो श्री वीरभद्र नमो देवो न भूतो न भविष्यति।
4: पट्टी क्षेत्र का पौराणिक महत्व भी है। काकतीय राजा प्रताप रुद्र और बाद के रेड्डी राजाओं ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं।
2: और राजमहेंद्री का नाम आते ही श्री विष्णुवर्धन महाराज से लेकर विजयनगर राजाओं के नाम उभरने लगते हैं।
4: टी प्रकाशम पंतुलु जैसे नेता, कवि श्रीपाद श्री कृष्णमूर्ति शास्त्री, महान कहानीकार श्रीपाद सुब्रमण्य शास्त्री, उपन्यास लेखक चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिम्हम, न्यायपति सुब्बा राव पंतुलु इसी क्षेत्र की देन है।
2: आदि कवि नन्नया ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद भी तो यही किया था। गोदावरी के जल को छूती हवाओं ने अनेक सृजनकारों और विभूतियों को पल्लवित किया है।
4: मेरा मन गौतमी ग्रंथालय देखने को कर रहा है।
2: हमें मन की बात जरूर सुननी चाहिए। चलिए चलते हैं।

0: येशुदास जी, आप इस गौतमी ग्रंथालय के अध्यक्ष हैं, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए ना।
1: राजमहेंद्र लो कवि वीरेशलिंग अनुचरुलैन नाळं कृष्णाराव गारु स्थापिंचिन వీరేశలింగ గ్రంథాలయం, వసురాయ గ్రంథాలయం, రత్నకవి గ్రంథాలయం వంటి ఎన్నో గ్రంథాలయాలను
0: రాజమహేంద్రి మే నాళం కృష్ణరావు జీ నే సన్ 1898 మే ఇస్కి స్థాపన కీ। బాద్ మే ఇస్మే అనేక గ్రంథాలయ మిల్ గయే। యహాం లగ్భగ్ 56,000 గ్రంథ హై తెలుగు, అంగ్రేజీ ఔర్ హిందీ కే। ముగల్ రాజాఓ కే జమానే మే ఛపా ఎన్సైక్లోపీడియా బ్రిటానికా, సంస్కృత బైబల్, अमूल्य पुरानी पत्रिकाएं, ताड़पत्र पर ग्रंथ, ब्रज भाषा में लिखे कबीर अभंग की प्रति आदि उपलब्ध हैं। रीडर्स एसोसिएशन के अंतर्गत यहां गोष्ठियों का आयोजन होता रहता है।
2: पुरातत्व के संबंध में जानकारी के लिए हम किससे मिलें?
3: पुराकालीन अनुसंधान संघ के सचिव श्री यादगिरी नरसिम्हा राव जी से।
2: नमस्कार नरसिम्हा राव जी, सुना है यहाँ खुदाई हुई थी और उसमें अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं।
4: अनेक संवत्सराल नुंचि अनेक विधालुगा पुरावस्तु सेकरण जरुगुतोंदि। मुख्यंगा
5: कई सालों से यहाँ पुराकालीन वस्तुओं का संग्रह हो रहा है। यहाँ के सरकारी म्यूजियम में अनेक अनुपम कालखंड हैं, शिलालेख और ताम्रलेख भी हैं, सुंदर मूर्तियां भी हैं। कोई 10 वर्ष पूर्व खुदाई में अद्भुत नंदी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, काकतीय राजाओं के जमाने की। दूसरी शताब्दी के एक बौद्ध विहार का भवन भी हमें मिला है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक औजार भी मिला है।
0: अरे इस ओर तो देखो, जीव कारुण्य संघ। चलो भीतर चलकर देखते हैं।
3: नमस्कार श्रीमती रमन चौधरी, हम लोग पर्यटक हैं, गोदावरी दर्शन के लिए निकले हैं। आपकी संस्था का बोर्ड पढ़ा तो जानने की जिज्ञासा हुई।
6: पवित्र गोदावरी तीरम लो राजमंड्री लो गौतमी जीवकारण संघम 1940 संवत्सर स्थापिंचबडिंदि। मुख्यंगा अनाथल सेवा, कुष्ठरोगुल सेवा, अनाथ प्रेत संस्था।
7: 1940 में इसकी स्थापना हुई। अनाथ लोगों की सेवा, कोढ़ियों की सेवा, अनाथ शवों का दाह संस्कार, बाढ़, तूफान, आग दुर्घटना आदि विपत्तियों के समय राहत देने और समाज निर्माण के काम चलते रहते हैं। सर्वधर्म समानता का प्रचार हमारा मुख्य उद्देश्य है। नारी कल्याण और सामाजिक वन योजना आदि कार्यक्रम भी चल रहे हैं। अनाथ वृद्ध आदि के लिए चिकित्सा और भोजन की सुविधाएं भी दी जाती हैं।
8: गोदावरी पर धवलेश्वर के पास बना बांध अपनी विशेषता लिए हुए है। 1852 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। इसे सर आर्थर कॉटन की कल्पना का साकार रूप कहा जाता है।
0: लोग उन्हें आधुनिक भगीरथ कहते थे। नया बांध बन जाने के बाद पुराने बांध के नमूने सुरक्षित रखे गए हैं। गोदावरी की यात्रा भी दर्शाई गई है।
9: और महान इंजीनियरों श्री विश्वेश्वरैया, केएल राव और एनजी के मूर्ति के तैलचित्र भी लगाए गए हैं। ये भी बताया गया है कि उन दिनों कैसी परिस्थितियों में ये बांध बनाया गया था। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर श्री वेंकट रेड्डी से प्राप्त करते हैं कुछ और जानकारी।
10: आनेकट निर्माणों तो गोदावरी डेल्टा प्रांतम पंट पोलाल तो सस्यश्यामलम गोदावरी तूर्पु डेल्टा 258,000 गोदावरी मध्य डेल्टा।
11: बांध के निर्माण से गोदावरी का डेल्टा उपजाऊ हो गया है। धान मुख्य उपज है, ईख और केले के बगीचे हैं। अकेले धान की पैदावार लगभग 35 लाख टन तक पहुंच गई है, जिसका मूल्य कोई 600 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है।
8: करीब 150 वर्ष पुराने इस बांध के पास ही नया बांध बनाया गया है, जो 1989 में बनकर तैयार हुआ। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर करीब 100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। दक्षिण भारत में इस तरह का प्रयोग पहली बार यहीं किया गया है।
0: गोदावरी यात्रा का एक भाग कोटपल्ली में समाप्त हुआ। हाँ, तो अब हमारी यात्रा का अगला चरण आरंभ होता है।
9: यानी अब हम कोनसीमा मंदिरों के घर में हैं और यहाँ से पहुंचेंगे मुक्तेश्वर।

0: चारों तरफ धान के खेत और नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं। कहते हैं यहाँ उत्तम खादी भी बनती है।
1: और एक अनोखी बात देखी, पता ही नहीं लगता कि एक गांव की सीमा कब खत्म हो गई और दूसरे की शुरू।
0: मेरी डायरी में लिखा है कि नरसापुरम में बुनाई का काम बहुत अच्छा होता है। श्री सत्यनारायण को लेस मेकर अवार्ड मिला है। चलो उनसे मिलकर बात करते हैं।
2: लेसर ने लिख लो मतरों मरते
3: लेस में हमारा दर्जा अव्वल है। हमने यूरोप में नया मार्केट बनाया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के माल का हम निर्यात करते हैं। हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है।
1: श्री आरामम चालुक्य और पल्लव राजाओं के शिल्प के वैभव का प्रतीक है यहाँ का गोपुर। ये गोपुर राज्य के देवालयों में सबसे ऊंचा है। कहते हैं ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने यहाँ तप किया। यहाँ सागर और वशिष्ठा गोदावरी का पवित्र संगम होता है। माघ शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ भगवान का कल्याण मनाया जाता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं।
4: ओम अधातः पंचांग रुद्रानाम ओंकार मंत्र संयुक्तम ध्यायन्ति योगिनः।
1: ब्रह्मगिरी से निकली गोदावरी ब्रह्म के तप स्थल तक कल कल करती आती है और समुद्र से मिलन करती है। समुद्र के भीतर कोई 4 मील दूरी पर होता है महोत्तम संगम। ये दृश्य नीले आकाश और नीले समुद्र जल के मिलन की परछाई दिखाने वाले दर्पण सा लगता है। गोदावरी की यात्रा अतीत से वर्तमान की यात्रा, सभ्यता और संस्कृति के विकास और ज्ञान की यात्रा।

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव एक नट का रूप धरकर पर्वतराज हिमवान के यहां गए। देवी पार्वती को दिए वचन के अनुसार हिमवान और मीना से पार्वती का हाथ मांगा। वे दोनों महाप्रभु को नहीं पहचान पाए और बहुत क्रोधित हुए। नारद के अनुरोध पर शिव जी अपने असली रूप में आ गए। हिमवान और मीना सहर्ष शिव पार्वती विवाह के लिए तैयार हो गए। भारी उत्सव के बीच विवाह संपन्न हुआ। महाक्षमादानी देवाधिदेव ने कामदेव को भी पुनः जीवित कर दिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी, कैलाश पर कई दिन उत्सव मनाने के पश्चात महादेव और महादेवी प्रणय आनंद उठाने एक मनोरम निर्जन स्थान की ओर चले गए।

0: देवता हाथ जोड़े शिव पुत्र के जन्म की बात जोने लगे।
1: महाभाग सूत जी, शिव पुत्र तथा तारकासुर वध का संदर्भ पहले भी अनेक बार उभरा है, ये तारकासुर कौन था?
0: शौनक जी, पूर्व काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के एक पुत्र थे ऋषि कश्यप। दक्षराज ने उन्हें अपनी 13 पुत्रियां ब्याही थी। इनमें दिति और अदिति ऋषि कश्यप की प्रमुख पत्नियां थीं। परंतु दोनों बहनों की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थी।
1: वो कैसे सूत जी?
0: देवराज इंद्र की माता अदिति अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु उनकी बड़ी बहन दिति बहुत आसुरी स्वभाव की थी। इंद्र को नीचा दिखाने के लिए वो एक अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र चाहती थी।
1: तो उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया सूत जी?
0: कश्यप ऋषि के कहने पर उन्होंने 10,000 वर्ष का घोर तप किया। इससे उन्हें पुत्र रूप में वज्रांग नाम का महाबलशाली दैत्य प्राप्त हुआ। उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्रता को एक स्तंभ से बांध दिया,
1: देवेंद्र को परास्त कर दिया। फिर क्या हुआ सूत जी?
0: परमपिता ब्रह्मा वज्रांग के पास गए, उससे इंद्रदेव को बंधन मुक्त करने को कहा। वज्रांग ने ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए इंद्र को स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात वज्रांग ने राजपाट त्याग दिया और सतोगुण अपना लिए।
1: परंतु सुना है वज्रांग पत्नी की आकांक्षाएं और आसुरी प्रवृत्ति अपनी सास से भी कहीं अधिक प्रबल थी, उसी ने तारक नामक पुत्र को जन्म दिया।
0: हां शौनक जी, तारक ने दैत्य माता दीति और अपनी मां से देवताओं के सर्वनाश के लिए तपस्या की अनुमति मांगी। दोनों ही ने उसे प्रसन्नता पूर्वक परमपिता ब्रह्मा की आराधना की आज्ञा दे दी।
2: हे ब्रह्मदेव, प्रसीद। हे ब्रह्मदेव, प्रसीद। हम जानते थे ब्रह्मदेव कि हमारी तपस्या से प्रसन्न हो आपको हमें दर्शन देने ही होंगे।
3: वज्रांग पुत्र तारक, तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हें दर्शन दिए हैं?
2: यही तो आप देवताओं की क्षीणता है, आप किसी की भी भक्ति से प्रसन्न हो तुरंत उसे वरदान देने पहुंच जाते हैं।
3: ब्रह्म भक्त तारक, इसे हमारी क्षीणता नहीं उदारता समझो। अपना अहंकार त्यागो और मनवांछित वर मांगो।
2: मुझे 2 वर प्रदान करें ब्रह्मदेव। पहला, कि आपके रचे हुए इस संसार में मुझसे अधिक बलवान और तेजस्वी और कोई ना हो।
3: तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो तारक।
2: दूसरा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों ना हो, ना आपके, ना विष्णु के, और ना ही संहारकर्ता शिव के।
3: वज्रांग पुत्र तारक, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे यहां से जाना तो पड़ेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हें यह वरदान दे भी दूं तो मृत्यु का ग्रास तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कहो, कैसी मृत्यु चाहते हो?
2: ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे मात्र शिव का औरस पुत्र ही मार पाएगा।
3: बस इतना सा वरदान? तथास्तु। दिया वज्रांग पुत्र तारक, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया।

ब्रह्मा, तुम देवता वास्तव में मंदबुद्धि हो, ये जानते हुए कि वो योगी शिव विवाह के बंधन के विरुद्ध है, तुमने मुझे ये वरदान देकर अमर बना दिया है। अमर बना दिया है ब्रह्मा।

0: मैं अमर हो गया। दैत्य माता दिति, गुरु शुक्राचार्य, सुना आपने?
1: हाँ वत्स तारक, मैंने सुना, परंतु इतनी सरलता से उन्होंने ये वरदान दे कैसे दिया? अवश्य ही इसके पीछे कुछ।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको देवताओं के वरदान के पीछे हमेशा कुछ न कुछ बुरा क्यों दिखाई देता है? तारक ने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया है, उसे वांछित वरदान तो मिलना ही था।
1: आप ठीक हो सकती हैं दैत्य माता दीति, परंतु मैं भी देवताओं को भली भांति जानता हूँ। दैत्यों को वरदान देते समय कुछ ना कुछ अपने लिए तो बचा ही रखते हैं। तारक, ब्रह्मा के वरदान से तुम अमर तो हो ही गए हो।
0: मैं तुम्हें संपूर्ण असुर साम्राज्य का राजा घोषित करता हूँ।
3: शुक्राचार्य गुरु,
0: आज से तुम तारकासुर नाम से प्रसिद्ध होगे।
2: पौत्र तारकासुर, आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, देवताओं का विनाश।

0: विष्णु हरे, महाप्रभु की इस लीला का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा।
1: हाँ विधात, उधर तारकासुर पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है।
0: एक बार तो मैं उसे समझा बुझाकर इंद्रासन त्यागने पर विवश कर चुका हूं। तब वो पृथ्वी के शोणित नगर में जा बसा था, परंतु अब उसमें इतना साहस और अहंकार भर गया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाला।
2: तो हम क्या करें प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें इस संकट से उबारिए।
0: सूर्यदेव, संकट निवारक तो मात्र सदाशिव ही हैं, हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा।
1: परंतु ब्रह्मा जी, उनकी प्रणय लीला भंग करना क्या?
0: श्रीहरि, वहां जाकर हम शिव वंदना करेंगे। महाप्रभु अंतर्यामी हैं, हमें आया जान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। चलिए देवतागण, चलिए
3: चलिए।

0: देवताओं पर आई विपदा का भान है हमें, परंतु हम विवश हैं। पुत्र उत्पत्ति के लिए देवी पार्वती की मनस्थिति अभी उपयुक्त नहीं है, वे सुप्तावस्था में हैं।
1: परंतु देवाधिदेव, तारकासुर नामक समस्या का तुरंत निराकरण आवश्यक हो गया है। कितने ही देव पुत्रों को वो निगल गया है। देव माताओं के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह चली है। संपूर्ण त्रिलोकी तारकासुर से त्रस्त है।
2: हे महादेव, अब इस जगत की रक्षा आपके पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, मैं, श्री ब्रह्मा और स्वयं आप तारकासुर के समक्ष प्रभावहीन है। महाप्रभु, तारकासुर के अत्याचारों का उत्तर मात्र आपका औरस पुत्र ही दे सकता है, और वो उसका वध करके।
0: विष्णु हरे, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता।
1: महाप्रभु, आप ही विधि हैं, आप ही विधान हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता।
0: अर्थात तारकासुर वध के लिए हमें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज प्रदान करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा देवताओं।

0: सूर्य देव?
1: हाँ
0: देखिए तो कैसा दिव्य बीज उत्पन्न हुआ है।
1: हाँ इंद्रदेव, इसका तेज और ताप तो मुझसे भी सहस्त्र गुना अधिक है।
0: इसकी उष्णता तो सबको विचलित किए दे रही है।
2: देवतागण लीजिए, पुत्र उत्पत्ति के इस बीज को ग्रहण कीजिए।
0: देवादिदेव, इस उत्तम बीज को धारण करने की क्षमता त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। देवादिदेव, इसे छूते ही व्यक्ति भस्म हो जाएगा।
2: इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सबके आग्रह पर मैंने ये बीज उत्पन्न कर दिया है। किसी न किसी को तो इसे ग्रहण करना ही होगा, ये व्यर्थ नहीं जा सकता।
1: देवाधिदेव, प्रभु देवी गंगा को आदेश दे, वे इस बीज को ग्रहण करें। उनका शीतल जल ही इस बीज के तेज और ताप को सहन कर सकता है।
3: विजया, ये तो अनर्थ होने जा रहा है।
4: हाँ जया, शिवपुत्र प्राप्ति का बीज देवी पार्वती के स्थान पर कोई और ग्रहण करने जा रहा है।
3: हमें शीघ्र ही देवी की तंद्रा भंग करनी होगी।
4: चल, शीघ्रता से चल, कहीं विलंब न हो जाए।
3: चल।
2: गंगे, देवी गंगे।
5: आज्ञा महादेव।
2: गंगे, इन देवताओं के आग्रह पर आप ये बीज ग्रहण करें। अपने निर्मल पवित्र जल में इसे रख, इसे शिव पुत्र का रूप प्रदान करें।
4: परंतु हे शिव शंकर, इस बीज पर मेरा अधिकार नहीं है।
2: गंगे, नियति ने आपको यह अधिकार सौंपा है। हम ही नियति हैं, शिव पुत्र की उत्पत्ति होनी ही है, यही नियति है। गंगे,
1: नियति अर्थात शिवाज्ञा देवी, शिवाज्ञा टाली नहीं जा सकती। प्रभु की इस लोक कल्याणकारी लीला का निमित्त आप बन रही है, ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है।
4: परंतु किसी से उसके मातृत्व का अधिकार छीन लेना गर्व का विषय नहीं होता परमपिता।
1: परंतु गंगे, शिवाज्ञा का पालन करना अवश्य गर्व का विषय है। श्रीहरि सत्य कह रहे हैं गंगे, आपके इस पाप नाशक कार्य से असंख्य प्राणियों का जो उद्धार होगा वो तो और भी बड़े गर्व का विषय है।

0: सर्वेश्वर की इच्छा। नाथ लाइए लाइए वो बीज, मैं ग्रहण करूंगी। ये तो भला हो सखी जया और विजया का जो मेरी तंद्रा भंग कर दी, अन्यथा लाइए महाप्रभु दीजिए। क्या हुआ, आप सब देवतागण चुप क्यों हैं?
1: पार्वती, वो बीज तो हमने देवी गंगा को दे दिया है।
0: क्या ये आपने क्या किया प्राणनाथ? गंगा को? कोई बात नहीं, गंगा मेरी बहन है, मैं अभी जाकर उनसे बीज ले आती हूँ।
1: देवी पार्वती, हम देवता दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं मांगते। इससे दान की महत्ता और दान की हुई वस्तु का प्रभाव मंद हो जाता है। बीज का प्रभाव मंद हो जाने से वो तारका सुर वध करने योग्य शिव पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
0: ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा! अरे देवताओं, आप मेरी तंद्रा भंग होने की प्रतीक्षा तो करते, आपने एक माँ से उसके मातृत्व का अधिकार छीना है, मुझे वंध्या बना डाला। ये अक्षम्य अपराध है, आपको दंड मिलेगा। आज से सभी देवियां पार्वती की ही भांति वंध्या हो जाएं।
1: पार्वती, आपने देवियों को ये कैसा श्राप दे डाला? इसे वापस ले लीजिए।
0: क्षमा करें नाथ, यदि महादेव अपना दान वापस नहीं ले सकते तो महादेवी भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। आओ जया, आओ विजया।
2: जी देवी।
3: देवताओं को ये श्राप देकर आपने उचित ही किया महादेवी।
4: हाँ जया, हमारे प्रभु के भोलेपन का लाभ उठाकर जब तब उनसे उचित अनुचित सब करवा लेते हैं।
0: परंतु जया, विजया, हमारे मातृत्व रस को तो उन्होंने सदा के लिए सुखा डाला।
3: देवी पार्वती, आप तो जगत की माँ हैं, माँ का मातृत्व रस कभी नहीं सूखता, क्यों विजया?
4: हाँ जया, देवी पार्वती, हमें विश्वास है कि शिव पुत्र जैसे ही आपकी गोद में आएंगे, आप उन्हें अपने मातृत्व जल से भिगो डालेंगी।
0: संभवतः तुम ठीक कह रही हो विजया, मातृत्व ही तो एक स्त्री का बल होता है।
3: आइए देवी, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए।

0: जया जी देवी, तुम चिंतित से इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथ के जलपात्र से जलधार भी भूमि पर ही गिर रही है। देवी, चिंतित तो मैं हूँ। आप स्नान कर रही हैं? यदि कोई आ गया तो? कैसे आएगा? द्वारपाल शिवगण प्रहरी तो हैं? नहीं देवी, द्वार पर कोई प्रहरी नहीं है। ऐसा क्यों विजया? देवी, जब से आपने देवताओं को श्राप दिया है, तभी से सभी शिवगण आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप किसी बात पर उन पर क्रोधित न होते। इस भय से वह आपके प्रासाद से ही दूर रहने लगे हैं।
1: पार्वते, देवी पार्वते।
0: अरे, ये तो स्वयं महादेव ही सो रहा रहे हैं। जा, उन्हें शीघ्रता से वहीं जाकर रोक जाया। मेरा स्नान अभी पूरा नहीं हुआ है।
2: जी देवी, अभी जाती हूँ। रुकिए, तनिक रुकिए महाप्रभु।
1: जया, ये क्या, आप हमें ही भीतर जाने से रोक रही हैं?
2: नहीं महाप्रभु, नहीं। वो बात ये है प्रभु कि देवी पार्वती अभी। देवी पार्वती?
1: कहो जया, शीघ्र कहो। देवी पार्वती।

0: क्या क्या हुआ देवी पार्वती को?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवाधिदेव। देवी पार्वती का स्नान अभी पूर्ण नहीं हुआ प्रभु, इसलिए आप अभी
0: तो ये बात है। ठीक है, हम देवगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, वे सब देवी पार्वती के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। स्नान पूर्ण होने पर हमें सूचित कर देना।
1: जो आज्ञा महादेव। बच गई जया, आज तो तू महादेव के क्रोध से बच गई, परंतु इस प्रकार उन्हें रोककर कब तक बच पाएगी?
2: अरे जया, क्या बड़बड़ाती आ रही है तू?
1: देखा देवी पार्वती, जिस बात का भय था वही हुआ। द्वार पर शिवगण की अनुपस्थिति में स्वयं महादेव अंदर चले आए।
2: अरे सखी जया, अगर द्वार पर शिवगण होते भी तो उनमें महादेव को रोकने का साहस कहाँ होता? वे तो सभी देवाधिदेव के ही गण हैं, उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम पार्वती गण कह सकें, जो मात्र देवी की आज्ञा माने और महाप्रभु से भी भय न खाए।
3: तो तुम क्या चाहती हो विजया?
1: देवी पार्वती, आप कोई ऐसा बलशाली द्वारपाल नियुक्त करें जो मात्र आपकी आज्ञा माने, ताकि हम अबला नारियां शिव भय से मुक्त हो जाएं।
3: बस इतनी सी बात? लो, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ।
1: देख देख तो जया, देवी अपने शरीर से उत्पन्न मैल से एक पुतला बना रही है।
2: हाँ, अब उस पुतले को भूमि में रखकर उसके कान में शिव मंत्र फूंक रही है।

0: विजया और पुतले ने एक अति प्रभावशाली बालक का रूप ग्रहण कर लिया।
1: बालक के मुख पर देवी पार्वती का तेज चमक रहा है, गौर वर्ण, उन्नत मस्तक और देख तो जया, बालक की भुजाएं कितनी बलिष्ठ है। और विजया देख, ये तो जन्म से ही अति बलशाली दिख रहा है। बालक को देखकर देवी पार्वती के मुखमंडल पर भी कैसे वात्सल्य भाव उमड़ रहे हैं। देख देख, बालक देवी के समक्ष नतमस्तक हो रहा है।
2: प्रणाम माते, मुझे बताएं मैं कौन हूँ?
1: तुमने मुझे माँ कहा है तो निश्चय ही तुम मेरे पुत्र हुए वत्स।
2: मेरा नाम क्या है माते?
1: पुत्र, तुम पार्वती के एकमात्र गण हो। तुम्हारे पिता शिव मेरे ईश हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ।
0: उत्तम, अति उत्तम देवी। वैसे भी ये मोहक बालक गणों के ईश्वर ही प्रतीत हो रहे हैं।
1: सखी जया, जा तो भीतर से पुत्र गणेश के लिए सुंदर वस्त्राभूषण तो लेकर आ।
0: अभी लाई देवी।
1: विजया, आज्ञा देवी, सिंदूर तो दे, मैं पुत्र गणेश का शिव तिलक तो कर दूं।
0: ये लीजिए देवी।
1: ये हुआ मेरे पुत्र का तिलक।
0: देवी, ये ले वस्त्राभूषण।
1: आइए पार्वती पुत्र, सजिए संवरिए।
0: आहा, क्या उत्तम छवि के स्वामी हैं बालक गणेश।
1: आओ हमारी गोद में बैठो।
2: जैसी आज्ञा माते।
0: आहा, कैसा मंगलकारी सुखदायक दृश्य है। देवी के नेत्रों से मातृत्व की अश्रुधार बह निकली है। बालक गणेश भी अपनी माता की गोद में निहाल हुए जा रहे हैं।
2: माते।
1: कहो पुत्र।
2: मेरे योग्य कार्य बताएं।
1: पुत्र गणेश, हर बालक का सर्वोच्च कार्य होता है माता की आज्ञा का पालन करना।
2: माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है?

0: पुत्र गणेश, ये दिव्य छड़ी लो। अभी तो तुम मेरे द्वारपाल का कार्यभार संभालो। मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी ना अंदर आने पाए।
1: माते, कोई भी नहीं?
0: हाँ पुत्र, कोई भी नहीं। कोई बलपूर्वक या हठपूर्वक आना चाहे तो इस छड़ी का उपयोग करना, यही तुम्हारा अस्त्र है।
1: जो आज्ञा माते, आप निश्चिंत होकर स्नान करें, मैं द्वार पर जाता हूँ।
2: आहा, महामना श्री गणेश के जन्म का ये प्रसंग सुनकर मन विभोर हो उठा है। पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति हो ही गई।
3: हाँ परम ज्ञानी सूत जी, यही होता है विधि का विधान।
2: महाभाग सूत जी, अब तो प्रभु शिव शंकर के दो पुत्र हो गए, इनमें से तारकासुर विनाशक कौन बना?
3: शौनक जी, इस रहस्य को अगली भेंट तक रहस्य ही रहने दीजिए।
2: जैसी आपकी इच्छा।
4: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के पहले अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक से लिया गया था।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु, जीह देह रि द्वार, तुलसी भीतर बाहरिउ जो चाहसी उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर

राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की इन सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगनगिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर इसी स्थान पर बैठे रहे।
1: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
2: क्यों राजन?
1: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
1: कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
2: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
1: लेकिन कौशल्या,
2: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोल ये राजन, प्रगति अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधन

0: और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी हो। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
1: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
2: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
1: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
1: जो आ गया।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दें।
1: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय में उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नब पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
1: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि
5: जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
1: क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधु बसहि जिन माहि।
3: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
1: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
5: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
1: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
3: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
5: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे।
3: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे। हाँ, बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
6: यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान

का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे। गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने उकाऊ, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावु वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निसिचर बद मैं हो सनाता, देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
3: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बन ही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
5: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं, किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं, इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधिदेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो।
5: आओ। वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान के ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत जोजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक

एक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहन, कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा में रखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी। अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आए काली, जिन्हने जो रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगु, अवसी देख अही देखन जोगु। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसे, जाने से सुन रही सभी।
2: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
3: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
2: क्या,
3: कंकन किन किन नूपुर धुनी
2: तात,

0: मानह मदन दुंदुभी तीन ही, मनसा विश्व विजय कहाँ की ही।
1: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित तजे दिगंचल।
0: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुरवाई।
1: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात।
0: जासु बिलोकि अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
1: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
0: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
1: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
0: लक्ष्मण, मैं असमंजस में हूँ।
1: स्वाभाविक ही है तात।
0: वह बात नहीं, सुनो। रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगु थरई नकाऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी।
1: लेकिन भगवान, विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
0: पर लक्ष्मण, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियम अनुडीठी।
1: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों। श्यामल गौर किशोर सुहाए।
3: सखी क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं?
2: कौन सच की बात है?
3: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई।
2: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
3: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, बोप किशोर देखी कि न ले हूँ।
2: सकुचो मत राजकुमारी।
3: नयन उधर कर देखो ना,
5: सन्मुख आमनी सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियों, मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
5: क्या हुआ क्या हुआ राजकुमारी?
3: चित्त तो ठीक है ना?
5: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी
5: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पन मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
5: सखियों, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना चाहिए।

0: मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के।
1: सुनु सिए सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु

लहि जाहि मनु राजा। मनु जाहि राजेउ मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरु।

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण दामोर अपमन अपन राम को अपने राम।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।